0: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. సమయం 8 గంటలకు వస్తుంది. కొద్దిసేపట్లో హిందీలో వార్తా ప్రసారం. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాత్ మే ప్రియాంక అరోడా. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे. मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की. भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे. फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी. और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर

0: अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
4: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है।

0: ही है। लुंगलेह की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
1: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
0: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेह जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरमसांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
2: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
3: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
5: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
2: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम की डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed comprehensive economic partnership agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And India signs off with 85 medals after gold rush in cricket, hockey and kabaddi at Asian Games 20.

0: ఆకాశవాణి ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
1: ये आकाशवाणी है. विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार. इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चेनॉय और संतोष तिवारी. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव.
2: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी. महीनों की फाइलें, अनगिनत हस्ताक्षर और दबी हुई लाल फीताशाही. दुनिया भारत को एक विशाल बाजार तो मानती थी, लेकिन यहाँ कारोबार करने से कतराती थी. फिर आया अक्टूबर 2001. गुजरात की धरती पर जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली, तो उन्होंने व्यवस्था से एक तीखा सवाल पूछा. व्यापारी पर अविश्वास क्यों? फाइलें दफ्तरों में महीनों क्यों रुके? और उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया. गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलनों और सिंगल विंडो की पहली डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ वो साहसिक प्रयोग आज 140 करोड़ से अधिक लोगों के देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है. फाइलों की धूल से निकलकर वन क्लिक नेशनल सिंगल विंडो तक, बिचौलियों के मायाजाल को तोड़कर जेम पोर्टल के डिजिटल लोकतंत्र तक, और लंदन दुबई को सीधी चुनौती देते गुजरात के गिफ्ट सिटी के आसमान छूते टावरों तक. ये सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है, ये भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रोमांचक पटकथा है. लोक कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सुशासन के 25 ऐतिहासिक वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जनसेवा से देश सेवा. आज का हमारा विषय है कारोबार आसान, निवेश व्यापक. इस अभूतपूर्व बदलाव को आज हम डेटा, तथ्यों और दूरदृष्टि के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दिलीप चेनॉय जी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष तिवारी जी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत.
3: धन्यवाद.
4: धन्यवाद
2: संतोष जी. आपके साथ शुरुआत करते हैं. जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसकी नींव गुजरात से मानी जाती है. बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स समिट का मॉडल पेश किया. आपसे समझना चाहते हैं कि उस सिंगल विंडो और प्रो बिजनेस गवर्नेंस मॉडल ने भारत के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के गठन में क्या भूमिका निभाई और उससे कितना बड़ा बदलाव पिछले एक दशक या गुजरात से देखें तो 25 वर्षों में आप देखते हैं.
3: आनंद, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे लिए

0: फिर रोमांचक भी है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के समुद्र तट पर लग रहा था, दहेज और हजीरा में एलएनजी टर्मिनल, और मैं उस वक्त इसलिए कि मैं उसमें पत्रकार था और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने दोनों के इनॉग्रेशन को कवर किया और दोनों में जो एक बात निकल के आई जो आपने अभी कहा, वो उस वक्त लगता नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेशनल लेवल पर की बड़ी भूमिका अदा करेगी, और वो था सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो जब इनॉग्रेशन के बाद जो बड़े बड़े व्यवसायी जो वहां इकट्ठा हुए थे उनसे प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सीधी बातचीत की, और कोई लबोलुभाव नहीं, वो सीधी बातचीत की। तो मैंने एक बड़ी कंपनी के सीएमडी से बाहर निकलने के बाद एक चीज पूछा, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या बात है कि इतने सारे व्यवसायी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के पीछे इतना आकर्षण है। उस वक्त ये कहानी लगती थी, लेकिन उस व्यवसायी ने मुझे उस वक्त बताया था कि संतोष गुजरात में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि ये वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो रियल में वन विंडो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आपको एक बार अगर राज्य सरकार ने, यानी गुजरात के राज्य सरकार ने अगर क्लियरेंस दिया और आपसे कहा कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह के क्लियरेंसेस जो हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हैं
1: जी,
0: तो आप आंख मूंद कर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको उस जो चीज अवेलेबल कराया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उस चीज की आवश्यकता है, आपको किसी और दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और वही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो काम आएगा। और आपने सही कहा कि इसी सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर गुजरात में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में आप देख लीजिए या मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी जगहों पर अलग अलग राज्यों को छोड़कर गुजरात में जाकर लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है, वहां भी धौलेरा अगर है या सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट का सेंटर अगर कोई राज्य बनना चाह रहा है तो वो गुजरात ही बन रहा है। ये सब ऐसे एक दिन में नहीं होता, ये एक सोच होता है। तो अगर व्यवसायी के लिए, इन्वेस्टर के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम कोई चीफ मिनिस्टर अगर अवेलेबल करा सकता है, तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उसे बिल्कुल पता है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये इंश्योर होता है। और बाकी राज्यों में भी कोशिश बहुत की गई है, की जा रही है, और जहां जहां इसमें सफलता मिली है वहां भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसी लिहाज से बढ़ा है। लेकिन गुजरात एक एक्सेप्शनल स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में रहा है और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका बहुत अहम रही।
1: निवेश की बात कर रहे हैं संतोष जी, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिलीप जी, तो भारत अब केवल एक घरेलू बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। और जब भी बात हम निवेश की करते हैं और राज्यों में निवेश की करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात हमें याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट गुजरात की पहल की तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर वो भी गुजरात जैसे राज्य में निवेश करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के समिट्स होने लगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होने लगी और कई कंपनियां न सिर्फ भारत आई बल्कि उसे रोजगार की स्थिति भी बदली। तो उस शुरुआत को और आज के सफर तक कैसे देखते हैं आप?
2: ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे संतोष जी ने आपको पहले बताया कि जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस किया था, उसमें एक खास तौर है कि जो गुजरात का सिंगल विंडो सिस्टम है वो हालांकि 2017 में अनाउंस किया गया था, लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुद चीफ मिनिस्टर एक तरीके से उनको ओवरसी करते थे और वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर किया जाता था। और अगर आप देखें तो वाइब्रेंट गुजरात जो 2003 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था, उसको आप लिखे तो जब तक कोई स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ नहीं करता था, इंडिया में नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट समिट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेट गुजरात जो ये 2003 में जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उस टाइम भी अगर आप देखें तो निवेशों को इंडिया से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और इसमें एक खास बात थी, तो अगर आप देखें, संतोष जी ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था, तो अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का एक प्रॉब्लम था तो वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे जहां पे यहाँ पर लैंड है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने अनाउंस किया और वहां पे जो उनको बोला गया था कि आपको हम ना हम आपको लैंड एक्वायर करना है ना कुछ करना है, लैंड एक्वायर्ड है, हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप MOU साइन करिएगा और आप कल से वहां पे अपना जो प्लांट है शुरू करें। आज की डेट में वो एक हब बन गया है। 2005 में वाइब्रेंट

0: गुजरात में मैं खुद शामिल था, उसमें ऑटो सेक्टर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस टाइम अमित शाह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वहाँ के, एक पूरा ऑटो सेक्टर पे सेक्शन किया गया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि भाई हमें थ्री व्हीलर देखना चाहिए। जब उनको बताया गया कि भाई अहमदाबाद में भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने दिशा बदला और उन्होंने अलग काम किए। तो अगर आप देखें तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो अगर आप देखें 2019 से आज तक लगभग 3.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में कमिट किया गया है। अक्टूबर यानी कि 2019 से मार्च 2025 तक इस साल का जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो अभी होने वाला है। और दूसरा जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो किया था वो खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के नहीं था, वो देश में जाकर के अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स मीटिंग्स करते थे, वो भी एक नया ट्रेंड था और अब सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और एक तरीके से जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम डाल दिए, उसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात से हुई थी, गुजरात में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: जी हाँ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां से वाइब्रेंट गुजरात की पहल हुई और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया। चर्चा को आगे बढ़ाते संतोष जी, भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक एफडीआई प्राप्त किया है। अगर थोड़ी चर्चा एफडीआई की करें, फीमा सुधारों और 100% ऑटोमेटिक रूट के विस्तार से विदेशी निवेशकों का भारत ने भरोसा जीता है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव किए गए, चूंकि एक अविश्वास का केंद्र भारत माना जाता था, वहां से विश्वास को जीतना, एफडीआई की पहल और उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने।
2: आनंद जी, निवेशक कोई भी जो विदेशी निवेशक होता है या जो कंपनियां होते हैं वो दो तीन चीजें किसी भी देश में जाने के पहले देखती हैं। अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या वैसे देश जहां के निवेश ज्यादा हुए हैं या होते रहे हैं, वहां पर जैसा मैंने कहा दो या तीन चीजें होते हैं जिसको देखते हैं। एक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें सर्टेनिटी कितनी है, चाहे वो राज्य हो या देश हो। निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह होता है कि कहीं हम ऐसी जगह में निवेश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पॉलिसीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होता है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में पिछले एक दशक से ज्यादा जिस तरह से निवेशकों को जो चाहिए वैसी पॉलिसीज जिस तरह से चेंज करके लाई गई है फॉर देयर बेनिफिट, यानी उनकी सहूलियत के लिए, वो एक दूसरी चीज है जो कि निवेशक देखता है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिक्कत में ला सकता है, वैसी पॉलिसीज अगर हम चाहें तो सरकार उस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है और जो कि पिछले डेढ़ दशक में जिसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा की है भारत के इंडस्ट्रियल सिनेरियो को चेंज करने में, मैं चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो भी चेंज है, सेंटिमेंट देखोगे तो भी चेंज है, अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो भी चेंज है, और जो एक्सपेंस होता है यानी कौन कौन सी कंपनियां आपकी देश में आ रही हैं, आपके देश में आ रही हैं, उसमें भी चेंज है। ये चेंज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये तीनों जो मैंने बात बताई आपको उसके चलते ये चेंज है। पहली बात, पॉलिसीज में सर्टेनिटी आई। जो भी पॉलिसी आज से डेढ़ दशक पहले जो भारत में चल रही थी उन पॉलिसीज में कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया जो कि निवेशक जो आते थे उनको ये लगे कि नहीं, नई सरकार आई है या सरकारें दूसरी आएंगी तो हमारी पॉलिसी, कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी रही। दूसरा, जब भी आप किसी देश में जाते हैं अगर नियम कानून को पालन करने में इतनी जहमत हो कि आपको ये लगे कि ऐसी जगह में हम निवेश करें क्यों, इस सरकार ने, आप चाहे फेमा ले लें या जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं उसको ले लें या जो सेंट्रल लेवल में जो भी एक्ट्स जितने बने हैं, कन्विक्शंस ले लीजिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो निवेशक होता था या कंपनियां होती थी उनको कन्विक्ट कर दिया जाता था, इन सारी चीजों में जो मैंने एक दो तीन चीजें बताई कि कन्विक्शन हो या निवेश की सहूलियत हो या फिर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, चाहे वो विदेशी फंड से रिलेटेड हो या देश में पैसा लगा रहे हो उससे हो, इन सब चीजों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे धीरे करके साल दर साल जो है वो चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे एफडीआई लिमिट, ऑटोमेटिक अप्रूवल या 100% एफडीआई जो है जहां जहां बचा हुआ था वहां वहां, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां बचा हुआ था ऑलमोस्ट जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सब में वो 100% लिमिट हो गया है। एक दिन में सब कुछ बदल देना बहुत मुश्किल है, बट जो डेढ़ दशक में बदलाव हुआ है वो निवेशकों का भरोसा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन हो, वो क्वेश्चन हो, या फिर ये सर्टेनिटी हो कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमें दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। इन तीनों लिहाज से पिछले डेढ़ दशक के सरकार के नियमों और कार्यक्रम को आप अगर देखेंगे तो डेटा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कहा कि एफडीआई जो है हमारा बहुत बढ़ा है, वो सिर्फ इंटेंट है जो आया है। जिस तरह

जैसे अभी काम चल रहा है, चाहे वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए आप, चाहे आप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स देख लीजिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं आज इंडिया में, चाहे आप

0: करते हैं, बात करिए और हम ये कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी सहूलियत बढ़ा सके वो हम बढ़ाएंगे। एक इकोसिस्टम और सेंटिमेंट, ये दोनों तैयार हुआ है, कोशिश सिर्फ यही करनी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको आगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर बढ़ाए।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा गिफ्ट सिटी और IFSCA की भी कर लेते हैं। IFSCA, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है। इन दोनों की कोशिशों के तहत भारत को लंदन, सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं हम और गिफ्ट सिटी के माध्यम से होने वाले बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट के ताजा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
2: तो अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी जो है वो गिफ्ट सिटी के पहले इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के द्वारा बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे विश्व को इंडिया से कैसे दे जाए। इसका दो पहलू है, एक हम इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया से कैसे दें और दूसरा जो है इंडिया में जो फैमिली ऑफिसेज हैं, जो दूसरे एंटिटीज हैं वो जाके विश्व में सेटअप करते हैं, उनको क्या गिफ्ट सिटी एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे कि वो विश्व भर दूसरे जाए, सिंगापुर जैसा आपने कहा, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन जाए, वो गिफ्ट सिटी से कर सके। अगर आप देखें तो उनका जो ढांचा है गिफ्ट सिटी का, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स का जो है, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अगर आप देखें गोल्ड का एक खास तौर से है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमारी जो एयरलाइंस की एक्सपेंशन हुई थी, हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बाहर से करते थे, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग अभी गिफ्ट सिटी से हो सकता है। दूसरा शिपिंग, हम करीब $70 बिलियन जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है वो शिप के लीजिंग में खर्च करते हैं, तो उसको कैसे भी ऑनशोर करें और गिफ्ट सिटी में उसको पोजीशन करें, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे है। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के है और ग्लोबल इनहाउस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैपिटल अट्रैक्ट करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे हम पहले FDI के बात कर रहे थे। ये है इंडिया से हम फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करें और इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पूरे विश्व पे कैसे छाए और अपना एक नाम करें। गिफ्ट सिटी जो है आज की डेट में ये एक नया इंटरफेस बन सकता है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। अभी भी अगर आप आगे जाके देखें तो इस टाइम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे काफी चर्चा हुई थी, उसका जो पायलट हुआ था वो गिफ्ट सिटी में हुआ था और गिफ्ट सिटी एक बड़ा एक पैनामे पे एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर रहा है टोकनाइजेशन। अगर आप देखें उसी वैल्यू का, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का, तो आगे जाकर के वो $16 ट्रिलियन का एक मार्केट बन सकता है और अगर हम उसको एंकर करें गिफ्ट सिटी में तो अगर आप उसका 20% या कुछ भी ले ले फिर भी वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक हब हो सकता है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो राजारामन है उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में ये कहा था कि अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी अभी आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, टोकनाइजेशन ऑफ जो स्टॉक्स वगैरह, उसको हम कैसे करके एक ग्लोबल सर्विस इंडिया से दें और या कि नहीं कि इंडियन कंपनीज जो है दुबई, हांगकांग, सिंगापुर या लंदन जा करके वहां पे अपना काम करें।
1: जी, कारोबार आसान, निवेश व्यापक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास अर्थशास्त्री मौजूद हैं, दिलीप चिनोय और संतोष तिवारी जी। संतोष जी, व्यापार का आधार स्तंभ हमारे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग माने जाते हैं और जब से MSME की संशोधित परिभाषा आई है ऐसे में क्या हुआ है कि छोटे उद्योग बिना अपना प्रारूप चेंज किए हुए स्केल अप हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को और विकसित भारत की दिशा में इन कोशिशों को?
0: आनंद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन ऑलरेडी इंडिया में आपको दिख रहा है। अगर आप निचले स्तर पर, गांव के स्तर से लेके आप जिला के स्तर पर जाएं या देश के कोने कोने में अगर जाएं तो युवा जो है वो आज पहले जैसा नहीं रहा। आज उसको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसको एक इंडस्ट्री चाहिए। आप कितने ही अपने फैमिली में देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी यंग यूथ जो आ रहा है उसको अपनी कंपनी चाहिए, उसको अपना बिजनेस चाहिए, उसका अपना आइडिया है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव इसलिए आया है कि एक समय था जब ये कहा जाता था, और आज भी दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है वो दिक्कत नहीं है, आपको बिजनेस चलाना हो दिक्कतें हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार ने जिस तरह से आपने कहा एमएसएमई के लेवल होते हैं उसमें डेफिनेशन में चेंज किया गया और

0: जो क्रोर्स में जो पैसा है, जिस तरह से आप डिफाइन होते हैं एमएसएमई, वो बड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए है कि जो एमएसएमई से रिलेटेड सहूलियतें हैं वो आपको मिल जाएं, और जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है। और दिशा उसमें यही है कि अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आपको वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगी इंडिया में। अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है वो स्काई रूट करेगा। जो एक छोटी सी कंपनी मानी जाती थी वो आज स्पेस में अपने जो है प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। इसी तरह से आप अगर स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप में जिस जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं, मैं बिल्कुल रूबरू हूं स्टार्टअप वर्ल्ड से, जिस तरह से आ रही हैं वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइडिया है और उनको बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जिस तरह के एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंजेस हैं या फिर जो भी इंसेंटिव्स जो दिया जाता है, अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं जो सरकार ने लाए हैं। अगर आप स्पेस सेक्टर में आपको काम करना है तो आज भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक कंपनी है जो आपको सहूलियत देती है, आपको फंड तैयार करती है, फंड देती है। दूसरी है जो कि एक संस्था है जो कि आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कोई चाहिए वो देती है। तीसरी है जो सरकार से आप चले आइए और आप बोलिए कि देखिए हमको ग्लोबल कोई अट्रैक्शन चाहिए, ग्लोबल कोई हमें चाहिए, सीखना है, हमें बाहर जाना है और सीखना है, उसमें मदद करती है। और मैंने सिर्फ स्पेस सेक्टर को कहा, हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चले जाइए। और हर अगले दिन जो है सरकार सेमीकॉन 2 में कुछ नई चीजें आई हैं, जो कि सेमीकॉन 1 जो था जिसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो आए गुजरात में उसके आगे की चीज है, उसमें भी फिर जो है छोटे मझोले उद्योग जो है उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सारी चीजें आ रही हैं, हम लिस्ट नहीं कर रहे यहां पर। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को बल्कि लोअर लेवल पे माइक्रो स्मॉल और स्टार्टअप्स को जिस तरह से सपोर्ट करना और हैंड होल्डिंग करना शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के छोटे और मझोले उद्योग जो है आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े उद्योगों में हेल्प करने वाला एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, और ये हो रहा है।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा जेम की कर लेते हैं। पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई केवल बड़ी कंपनियों या रसूखदार बिचौलियों तक सीमित रहते थे, लेकिन जेम ने इस बिचौलिए तंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिकरण किया है। और आंकड़े बताते हैं कि जेम पोर्टल की शुरुआत होने से लेकर अब तक 18.4 लाख करोड़ से अधिक का सरकारी व्यापार दर्ज हुआ है। जो जेम के आंकड़े हैं उसमें एमएसएमई कारोबारी, महिलाओं और छोटे उद्यमियों का जो योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: जेम पोर्टल जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, तो और ये इसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है, और वो जैसे आपने आंकड़े बताए गवर्नमेंट की काफी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पे लिस्ट करने होता है। और देश में चाहे आप स्टार्टअप हो जैसे संतोष जी ने कहा, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे लार्ज उद्योग हो, आप उस पे अगर बिड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। इसका एक काफी अच्छा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसमें जो छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। अब जेम पोर्टल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करके उसमें बिल डिस्काउंटिंग का एक जो प्रावधान है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और छोटे जो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क में, तो उसमें ये एक नेशनल काइंड ऑफ मार्केट प्लेस किया गया है और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी उन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी बोला है कि आप इसी से आगे जाकर के करिएगा। एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया गया है ईनैम, उसमें जो है आप कहीं पे भी एक कृषि उत्पादक हो आप अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप देखें तो टोकनाइजेशन में भी अभी जो कर रहे हैं वेयर हाउस रिसीट टोकनाइजेशन का एक काफी सिलसिला चल रहा है। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो पहले हम DGSND उसको कहा करते थे वो एक फिजिकल सिस्टम था, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलेजेस भी उससे प्रिक्योर करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स भी प्रिक्योर करते हैं। और ये जो ग्रोथ हुआ है इसके पिछले कई साल पे, और उन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, हम उसको ONDC कहते हैं
1: जी।
2: वो जैसे वो भी इनिशियल स्टेजेस में है, अगर वो बढ़ेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है, ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सुविधा होगी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। अगर वो ट्रेड से उसको भी जोड़ देते हैं तो ये जेम पोर्टल लेकर के और ONDC पोर्टल लेकर के एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन सकता है।
1: जी हाँ, चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। और संतोष जी, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिर्फ नियमों

0: को ही आसान बनाना काफी नहीं होता है, जो पुराने बेकार नियम हैं उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर अपने अब तक के सफर में इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। जन विश्वास अधिनियम ने लगभग 40,000 से अधिक शिकायतों को खत्म किया, कई मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। सवाल यह है कि इसका भारतीय उद्योगपतियों के मनोविज्ञान और आर्थिक कार्य प्रणाली पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है।
1: मैं इसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता हूं आनंद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको लेकर ये सूत्र जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें, जैसा आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड लेवल पर ठीक किया था
0: जी।
1: उसमें से भी ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको बोलते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मैंने पहले उल्लेख किया था इस बात का, छोटे छोटे नियमों के उल्लंघन के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आप व्यवसायी हो, जाहिर तौर पर तरह तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का उल्लंघन अगर हुआ और आपको जेल में डाल दिया जाए कोई छोटे से उल्लंघन के लिए, बड़ी बात थी और वो एक सिग्नल गलत देता था। तो जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था, उसमें 183 ऐसे माइनर ऑफेंसेज को, करीब 42 सेंट्रल लॉज में, जहां पर कि इन सब के चलते आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल में डाल दिया जाता था फॉर टेक्निकल और माइनर लैप्सेस, उनको मॉनेटरी जो है वो पेमेंट करके आपको छूट जाएंगे आप। बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2025-26 के बजट में जो जनविश्वास 2 बिल आया, उसमें ऐसे 355 प्रावधान जो है अक्रॉस 16 मोर सेंट्रल एक्ट जो है उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखने में बहुत आसान सी चीज लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए उस व्यवसाय के लिए या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि किसी एक छोटे नियम के उल्लंघन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए, तो भारत जैसे देश में तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आर्थिक जगत में फिक्की जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है भारत के, वहां पर एक बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को और सबको देती है। तो निकल कर ये आया कि ये जो लॉज हैं जो रिडंडेंट हैं, यानी वैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जिनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको पालन करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों का समय जाता है। ये बात यहां लिखा हम नहीं चर्चा कर रहे, पर मैं आपको परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं। तो हमने जाकर केंद्र सरकार में, जहां बताना चाहिए वहां पर ये बताया। पहली दफा फिक्की ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको बेकार में जो पड़े हुए हैं इतने सारे, और हजारों की संख्या में, जिनकी जरूरत कोई नहीं है। अगले साल के बजट में इन रूल रेगुलेशंस को सरकार ने हटा दिया। ऐसी चीजें भी हुई हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन जो है, जो जनविश्वास बिल है, वो तो है बहुत बड़ी बात, लेकिन सहूलियत बढ़ाने के लिए भी जो रिडंडेंट लॉज थे उनको भी हटा दिया गया। तो चेंज करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ कि एक सरकार, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उससे घूमते घूमते 15 साल लग गए और ये चेंज हुआ। नहीं, आप आइए लाइन मिनिस्ट्री को बताइए, यानी जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आप हैंडल होते हैं, ऊपर के तौर पर सबसे टॉप में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लेवल पर उसको समझा जाएगा और अगर जायज है उसको ठीक कर दिया जाता है।
0: दिलीप जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जब भी हम व्यापार को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो एक चीज जो परेशान करती है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी माल ढुलाई की लागत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट की ओर लाने में जो भूमिका निभाई है, इसका असर आप कैसे देखते हैं?
2: ये भी एक तरीके से गुजरात से ही शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम था, ठीक है। क्योंकि पहला जो गति शक्ति का जो पहला था वो एक प्रगति नाम का एक सिस्टम था, और वो जो PM गति शक्ति बनाया, जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बनाया। प्रगति में क्या होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू लिया करते थे, जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, उनका क्या कारण है, और उसमें काफी अकाउंटेबिलिटी होता था, क्योंकि जिसके पास वो एक तरीके से एक्शन पेंडिंग था उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको क्लियर करना पड़ता था। फिर प्रगति में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी चीजें हुए, एक तो डिजिटल डेटा आ गया हर प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा फिजिकल मीटिंग्स नहीं होते थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होते थे, तीसरा ये GIS और जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ गया, चौथा सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वो इकट्ठा आ गया, और पांचवी जो किसी का अगर ग्रीवियंस होता था वो रिजोल्व हो जाता था। अगर आप देखें 2026 का जो डेटा है तो 382 प्रोजेक्ट्स प्रगति में रिव्यू हुए थे, करीब 85 लाख करोड़ के भी थे, और करीब 3,000 इश्यूज एक दिन रिजोल्व हो गए। इसको एक नई सोच आई, ये प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना चाहिए था। फिर 13 अक्टूबर 2021 में ये पीएम गति शक्ति उन्हें

0: लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़ा किया और एक सेक्रेटरी था लॉजिस्टिक्स के लिए। तो उसमें क्या किया था कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में देखें, तो अगर आपके पास एक किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में शहर में आपका एक फैक्ट्री है, तो आपको लोकल इंडस्ट्रियल एस्टेट से हाईवे तक ले जाना या एयरपोर्ट तक ले जाना या पोर्ट तक ले जाना, वो एक ज्यूरिसडिक्शन आता है। पोर्ट में दूसरा ज्यूरिसडिक्शन आता है। अगर आप हाईवे में ले गए तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आ जाती है, फिर पोर्ट आ जाता है, फिर एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो बॉडीज है इसमें इंटीग्रेट करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीमलेस कनेक्टिविटी और उसको कैसे करें, और हम उसको इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं, जो फास्ट टैग सिस्टम भी आया है टोल हाईवेज में, वो भी इसी का, क्योंकि टोल में वेटिंग होता था और टाइम कर रखता था। एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जैसे संतोष जी ने पहले धोलेरा का सेमीकंडक्टर्स का बोला था, अब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि वो क्विक टर्न अराउंड है। तो एक तो आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट तो एक चीज है जो हम 16% या 17% से हम उसको एक सिंगल डिजिट 8 या 9% में ले आए हैं। दूसरा जो पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, एयरपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, अगर आप देखें तो आज आप दिल्ली से मुंबई 17 या 18 घंटे में कर सकते थे, जैसे आपको 3 दिन या 4 दिन लगते थे। और ये जो फैक्ट्री से, रोड से, रेलवे से, लॉजिस्टिक पार्क से, पोर्ट और शिपिंग और एयरपोर्ट, ये पूरा जो चेन पीएम गति शक्ति में आ गया है, अब आप उसको बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो सेक्टर एसोसिएशन है, उनसे फीडबैक लिया जाता है भी कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गति शक्ति जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग कनेक्टिविटी एज ए नेटवर्क का एक तरीका है। और सारा स्कीम आप देखें तो इसमें पीएम गति शक्ति के द्वारा उन्होंने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया था, और ये पूरा इंडिया एक मॉडल हो सकता है।
1: विषय बहुत व्यापक है, समय बहुत कम है संतोष जी, हम कार्यक्रम के अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 वर्षों का सफर हमने बहुत छोटे छोटे तरीकों से चर्चा करने की कोशिश की। इस सफर का जो लक्ष्य है वो है 2047 का विकसित भारत। कैसे देखते हैं आने वाले समय में इस आधार पर किस तरह की इमारतें बनते हुए, संक्षेप में?
2: जिस समय में मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, और उस समय चुनाव का वक्त था, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जो मेरे दोस्त थे, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का एक्सपीरियंस था। तो मैंने पूछा कि एक विजनरी या इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को विजन के तौर पर देखता है, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो कि यहां आएंगे वो जीत जाएंगे तो आएंगे, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, और वो इस पूरे 25 साल के सफर को समअप करता है और आगे की बात जो आपने 2047 की उसको भी इंगित करता है। उन्होंने ये कहा, संतोष देखिए, पॉलिसी बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना ये आज देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाया है। भारत को आज बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश की तरक्की जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में दिखेगी। 1.5 दशक की जो उनकी सरकार का जो एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। यही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जो आप ओल्ड एज इकोनॉमी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, आज आपको न्यू एज इकोनॉमी में ले जाना है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2047 में भारत में जो ग्रोथ होगा और जहां भारत पहुंचेगा, वो टेक लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी होगा। अभी हाल में वित्त मंत्री ने कहा बेंगलुरु में कि सेमीकंडक्टर, एआई, ये सारी चीजें जो हैं, देश के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो ये बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले से करते हैं, एआई हो, सेमीकंडक्टर हो। आगे का भारत जो 2047 का आप देखेंगे, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा क्या ग्रोथ रेट होगा, क्या होगा, पर टेक लेड ग्रोथ होगा। और 2047 में हम सिर्फ विकसित भारत नहीं होंगे, हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब होंगे, जो बनाता भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करता है और विश्व में सप्लाई भी करता है।
1: दिलीप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स।
0: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री का एक जर्नी देखें, तो गुजरात से भारत तक जो ये एक यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की एक कहानी है। यह सरकार की ये बदलती भूमिका है, तो जहाँ पे पहले वो एक गेट कीपर थी, आके वो आपको सबके चीज के लिए एक परमिशन चाहिए होता था, अब सरकार की अनुमति चाहिए थी, फिर सुविधाएं देने के लिए और सब चीजें प्राप्त करने के लिए मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे, आपको कहीं कहीं जाने से। अगर अब जो सरकार देखे, अब कोशिश है कि ये सरकार कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने की काम कर रही है। और जैसे जो आज की इकोनॉमी है वो 2047 में इकोनॉमी

0: काफी अंतर होगा। और इस सरकार का ये प्रयास है कि सबको साथ लेके, सबका विकास लेकर के आगे करके एक विकसित भारत बनाए।
1: यदि हम देखें तो पिछले 25 वर्षों में सुशासन से समृद्धि की यात्रा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के सपने को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कहानी है। गुजरात की सिंगल विंडो से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया और विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्रों तक पहुंच गया है। दिलीप जी आपका और संतोष जी आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद आनंद जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पाहमला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पाहमला के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पाहमला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
5: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
4: राष्ट्रपति पाहमला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पाहमला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
6: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
7: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
6: There are rooms to operate from, both sides would do it.
4: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
0: Mr. Modi said at the same time India will attract new Swiss investments in important sectors such as biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability. The Prime Minister said through these initiatives, the two nations will work together to develop trusted supply chains and reliable solutions for the entire world.
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: Swiss President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. The visiting dignitary was accorded a ceremonial welcome at the forecourts of Rashtrapati Bhavan.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा

0: दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: विजिट इज अ स्टेपिंग।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
4: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
5: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
4: There are rooms to operate from. Both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
5: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
6: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
7: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश

0: के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
2: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
3: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अशांति,
1: अशांति,
0: वरदान,
1: वरदान,
0: अभिशाप,
1: अभिशाप,
0: बुद्धि,
1: बुद्धि,
0: मूर्खता,
1: मूर्खता,
0: सस्ता,
1: सस्ता,
0: महंगा।
1: महंगा।

0: लड़की,
1: लड़की,
0: पिता,
1: पिता,
0: माता,
1: माता,
0: आदमी,
1: आदमी,
0: औरत।
1: औरत।
0: अच्छा, अब कुछ वचन शब्द बताऊंगी, लिख लो।
1: जी अध्यापिका जी, कक्षा,
0: कक्षा, कक्षाए, किताब,
1: कक्षा ए,
0: किताबे,
1: किताब,
0: पौधा,
1: किताबे,
0: पौधे,
1: पौधा,
0: रुपया,
1: पौधे, रुपया,
0: रुपये,
1: रुपये,
0: सीमा,
1: सीमा,
0: सीमाए,
1: सीमाए,
0: नीति,
1: नीति,
0: नीतिया, पीढ़ी,
1: नीतिया, पीढ़ी,
0: पीढ़िया,
1: पीढ़िया,
0: समस्या,
1: समस्या,
0: समस्याए,
1: समस्याए,
0: बालक,
1: बालक,
0: बालक,
1: बालक,
0: मछली,
1: मछली,
0: मछलिया।
1: मछलिया।
0: अच्छा, अब कुछ प्रश्न पूछूंगी, जवाब दो।
1: जी अध्यापिका जी,
0: युगरत्न श्रीवास्तव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कब भाषण दिया?
1: अध्यापिका जी, युवरत्ना श्रीवास्तव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सितंबर सन 2009 में भाषण दिया।
0: हाँ, अच्छा, पीने का साफ पानी किन्हें नहीं मिल रहा है? हाँ,
1: हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है।
0: अच्छा, क्या पिघलता जा रहा है?
1: अध्यापिका जी, हिमालय पिघलता जा रहा है।
0: अच्छा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था?
1: महात्मा गांधी जी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच के नहीं।
0: अच्छा, ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में क्या दिया?
1: अध्यापिका जी, ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी।
0: अच्छा, तुम्हारा उत्तर ठीक है। आज हमारा पाठ समाप्त हो गया।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
0: सुभाषिश।
2: మీరు ఇంతవరకు బదలే అపని సోచ్ 9వ తరగతికి హిందీ పాఠం విన్నారు. ఉపాధ్యాయులు శ్రీమతి సిహెచ్ పావనీవనలత, విద్యార్థిని ఎం స్వరూప. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి వెలువడింది.

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो।
1: आकाशवाणी

0: के साथ जुड़िए ना सांझ के शो सिटी लाइट्स में हर रोज शाम 5 बजे।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ముకేష్ కుమార్. भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं. इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है. विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं.
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ.
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था.
4: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का

0: अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया केम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले दो वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility, exchange of young professionals and cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, both nations identified new possibilities for cooperation in military exchanges and defence production. He said they've also agreed to further deepen cooperation in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्ज्वल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: सेक्रेटरी वेस्ट इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सिबी जॉर्ज एड्रेस्ड मीडिया इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग ऑन बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स।
3: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
1: The Supreme Court has clarified that it has not approved any

0: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం సమయం 8:45 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ముందుగా హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాత్ మై ముకేష్ కుమార్. भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली. आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना. 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू. केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता. क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे. और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई. इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है. यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है. इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे.
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की. डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा. भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं. इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है. विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं. श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए.
3: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ.
3: एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर TST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता.
5: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही. उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई. दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की. यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई

0: दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में पांचवें कॉटेल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेनदेन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
3: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
4: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और

0: न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
1: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 पीएचडी स्कॉलर्स को पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत

0: like life sciences, banking, fintech, insurance, or sustainability, promoting green and clean energy. This EFTA and TEPA, they have a great significance for Indian economy as well as India's growth.
1: Right. Thank you so very much, Professor Joshi, for having joined us and shared your views on the topic. Thank you so very much.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on strengthening India-Switzerland bilateral ties. The participants were Professor Anshu Joshi, international affairs expert, and Nishit Kumar, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR.
3: Spotlight. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం గజ్రా హిందీ కార్యక్రమం.
4: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హే ప్రస్తుత హే హిందీ కార్యక్రమ గజ్రా. ఆజ్ కే ఇస్ కార్యక్రమ మే హమ్ ఆప్కే లియే లేకర్ ఆయే హే శిక్షక్ రాష్ట్ర నిర్మాణ్ కే మార్గదర్శక్ డాక్టర్ నీలిమా మండవా కి వార్త, షేక్ హుమయూన్ భాషా కి కవిత और एक भजन भी सुनेंगे. आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक डॉक्टर नीलिमा मंडवा की वार्ता.
5: शिक्षा केवल ज्ञान का अर्जन नहीं है, यह समग्र विकास का आधार भी है. शिक्षा व्यक्ति की सोचने की क्षमता को विकसित करती है, उसके आत्मसंवर्धन में सहायक होती है और उसे समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाती है. शिक्षा का महत्व समाज और व्यक्तित्व दोनों की दृष्टिकोणों से अत्यधिक है. शिक्षक शिक्षा के द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार निभाते हैं? राष्ट्रीय निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है. किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों पर निर्भर करता है. शिक्षक राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी को योग्य नागरिक बनाकर देश को प्रगति के पद पर ले जाएंगे. शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, वे विद्यार्थियों को सही दिशा और जीवन मूल्य भी प्रदान करते हैं. वे उनमें नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, परिश्रम और देश प्रेम की भावना विकसित करते हैं. यही गुण एक साधारण विद्यार्थी को महान नागरिक बनाते हैं. समाज में जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक और नेता हैं, वे सभी किसी न किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में पले बड़े हैं. इसलिए शिक्षक को राष्ट्र की आत्मा और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है. वे अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर शिक्षा का प्रकाश फैलाते हैं, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है. शिक्षक विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान और तकनीकी शिक्षा देने के साथ मानवीय मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा भी देती होती है. शिक्षा का प्रमुख आधार शिक्षक ही होता है. शिक्षक न केवल विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माता बल्कि राष्ट्र निर्माता भी होता है. किसी राष्ट्र का मूर्त रूप उसके नागरिकों में ही निहित होता है. किसी राष्ट्र के विकास में उसके भावी नागरिकों को गढ़ने वाले शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. आदिकाल से शिक्षक की महत्ता का गुणगान उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण ही होता आया है. ऐसे ज्ञानी गुरुओं के बल पर ही हमारे राष्ट्र को जगत गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. आज भी शिक्षक उसी निष्ठा से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण करके देश के भविष्य को संवार सकते हैं. शिक्षक राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका और

दायित्व इस प्रकार कहा जाता है सामाजिक रूप में वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों और शक्तियों को प्रकाशित करती है। व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से शिक्षा आत्मसमझा और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में उपयोग कर सकता है। यह मानसिक विकास नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल में भी सुधार करते हैं। आधुनिक युग में बालकों की केवल अंतःशक्तियों का विकास होना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बाह्य व्यक्तित्व का विकास भी बहुत आवश्यक है। शिक्षक बालकों के अंतः और बाह्य व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विद्यार्थियों में कुछ मूल प्रवृत्तियां जन्मगत होती हैं। एक शिक्षक उन मूल प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है, उनका मार्ग निर्देशन करता है तथा उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। इससे बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षक का कार्य है कि वह बालक की मूल प्रवृत्तियों में सुधार करके उसे समाज तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करे। शिक्षक अपने मन वचन और व्यवहार से एक आदर्श प्रस्तुत करके समस्त छात्रों को नवीन दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत शिक्षा से ही छात्र कुशल नागरिक बनकर सामाजिक विकास में भाग लेता है। गांधी जी का कथन है, यदि शिक्षक को अपने नाम को सार्थक बनाना है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों का चरित्र निर्माण और उनका नैतिक विकास करना अच्छी शिक्षा द्वारा ही बालक सत्यम शिवम सुंदरम को साक्षात्कार करता है, उसे अपने आचरण में लाने का प्रयास करता है। एक शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वह बच्चों के जीवन में नैतिकता अनुशासन और कर्तव्य का भाव भी जगाता है। शिक्षक समाज में जागरूकता लाकर राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है। यदि शिक्षक सही दिशा दिखाए तो विद्यार्थी समाज के लिए आदर्श नागरिक बन सकते हैं। शिक्षक ही वह शक्ति है जो राष्ट्र का भावी पीढ़ी को योग्य और संस्कारित बनाती है। विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और उनके निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षक पर ही होती है। सामाजिक विकास के रूप में शिक्षक का योगदान। कोठारी आयोग के अनुसार भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। यह तद्य परोक्ष रूप से शिक्षक की भूमिका को भी निश्चित कर रहा है। अकोलकर का कथन है, शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक शिक्षक है। शिक्षा से समाज ने जिन इच्छा आकांक्षा और उद्देश्यों की पूर्ति की कामना की है वह शिक्षक पर निर्भर करती है। शिक्षकों का दायित्व यही है कि वे समाज और राष्ट्र की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करें। शिक्षक की भूमिका केवल छात्रों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। छात्रों को पढ़ाई के अलावा उन्हें सामाजिक जीवन से संबंधित दायित्वों का बोध कराना तथा उन्हें समाज के निर्माण के योग्य बनाना भी शिक्षक का ही दायित्व है। भविष्य में ऐसा ही छात्र समाज के विकास का आधार बनते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा समाज में समानता और न्याय की स्थापना करती है। यह सामाजिक असमानताओं को दूर करने, जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने में सहायता होती है। एक शिक्षित समाज अधिक समृद्धि
और संगठित होता।

है जो सामाजिक समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के अनुकूल बनाने का दायित्व शिक्षक का है। शिक्षक ही व्यक्ति को समाज के आदर्शों, मूल्यों और मानवताओं से परिचित कराता है। समाज के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य और अधिकार है और इनका सदुपयोग कैसे किया जाए, इन सभी बातों की जानकारी शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त होती है। शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह अपनी शिक्षा के द्वारा आदर्श नागरिकों के गुणों को विकसित करे, जिससे छात्र अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली प्रकार समझ सके और जीवन में उनका समुचित उपयोग कर सके। आदर्श नागरिक ही आदर्श राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व उसके आदर्श नागरिकों पर निर्भर करता है। एक आदर्श शिक्षक अपने शिक्षा द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संचार करता है। शिक्षक अपने पुरुषार्थ से अबोध बालकों को अच्छा नागरिक बनाकर अपने राष्ट्र निर्माण के दायित्वों का निर्वाह करना है। शिक्षक छात्रों को अपनी संस्कृति और राष्ट्र गौरव से परिचित कराता है। शिक्षक अपने वचन और व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करके समस्त छात्रों में राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करता है। ऐसे शिक्षकों से बालकों को नवीन दिशा मिलती है। वे राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षक ही छात्र को एक अच्छा इंसान भी बनाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। कुल मिलाकर शिक्षा विद्यार्थी को आर्थिक समृद्धि में विकास की ओर ले जाती है। शिक्षक छात्रों को भिन्न भिन्न विषयों और व्यवसायों की शिक्षा प्रदान करता है। वह अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात परिवार, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली भांति कर सके। देश का युवा आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में सदैव सहायक होगा। आर्थिक विकास की नींव रखने में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। शिक्षक न केवल समाज को साक्षर बनाते हैं, बल्कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी संसाधन मानव पूंजी का सीधा निर्माण करते हैं। शिक्षक छात्रों को आधुनिक ज्ञान और रोजगार परक कौशल सिखाते हैं। यही छात्र आगे चलकर कुशल इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और श्रमिक बनते हैं, जो देश के सफल घरेलू उत्पादन को बढ़ाते हैं। शिक्षक बच्चों में तार्किक सोच, जिज्ञासा और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करते हैं। यह सोच भविष्य में नए व्यवसायों और तकनीकी आविष्कारों को जन्म देती है, जो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। शिक्षक छात्रों को संसाधनों का सही प्रबंधन, बचत, निवेश और कर भुगतान जैसे बुनियादी आर्थिक नियमों की समझ देते हैं। इससे नागरिक आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनते हैं। शिक्षक छात्रों में समयबद्धता, ईमानदारी, टीम वर्क और अनुशासन जैसे मूल्य भरते हैं। एक मजबूत कार्य संस्कृति किसी भी देश में व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाती है। शिक्षक शिक्षा देकर उचित दिशा और निर्देश देता है। जीवन में प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उचित दिशा निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यह निर्देशन
कई प्रकार का होता है।

है जैसे व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा छात्र

0: के अनुरूप उसे व्यवसाय चुनने का परामर्श दिया जाता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को इन सभी विषयों में उचित दिशा निर्देशन देकर देश का सफल नागरिक बनने में उनकी सहायता करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि शिक्षक ही वह स्तंभ है जिन पर राष्ट्र की नींव खड़ी होती है। शिक्षक जितना सशक्त और योग्य होगा, राष्ट्र उतना ही मजबूत और प्रगतिशील होगा। इसलिए राष्ट्रीय निर्माण में शिक्षक की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: शिक्षक राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शक। डॉक्टर नीलिमा मंडवा की वार्ता जो अभी तक आपने सुना, लीजिए अब प्रस्तुत है एक भजन।

0: भजन जो अभी तक आपने सुना, लीजिए अप्रस्तुत है शेख हुमायूं भाषा की कविता।
1: पहली कविता का शीर्षक है यही है जीवन। हरे भरे पेड़ों से नव पल्लव उगते हैं, चिकने चिकने बनकर मुस्कुराते हैं, हवा के झोंकों से झूम झूम उड़ते हैं, दुश्मन बनकर बुढ़ापा आता है। एक दिन बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं, एक दिन बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं, यही है जीवन, यही है जीवन। कुछ पलों का यह नश्वर जीवन, डाली डाली में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, डाली डाली में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, अपने रंगों से जन जन का मन मोह लेते हैं, अपने रंगों से जन जन का मन मोह लेते हैं, अपनी सुगंध की बहार चारों ओर फैलाते हैं, अपनी सुगंध की बहार चारों ओर फैलाते हैं, मंजुल बने बसंतोत्सव खुशी से मनाते हैं, हवा की झोंकों से गिर जाते हैं बेजान होकर जमीन पर एक दिन, हवा की झोंकों से गिर जाते हैं बेजान होकर जमीन पर एक दिन, अब जवानी नहीं रंग ढंग नहीं सुगंध नहीं मुरझाकर सोते हैं, अब जवानी नहीं रंग ढंग नहीं सुगंध नहीं मुरझाकर सोते हैं, निश्चेष्ट होकर मृत्यु की गोद में, हमेशा हमेशा के लिए सोना यही प्रकृति का नियम है, हमेशा हमेशा के लिए सोना यही प्रकृति का नियम है, यही है जीवन, यही है जीवन, कुछ पलों का यह नश्वर जीवन। खुशियों का संगम है मानव जीवन, खुशियों का संगम है मानव जीवन, जवानी आनंद की न्यारी है पहचान, जवानी आनंद की न्यारी है पहचान, बुढ़ापा बीमारियों का बनता है बड़ा खान, बुढ़ापा बीमारियों का बनता है बड़ा खान, एक दिन मौत आकर घेर लेती है सुमसाम, यही है जीवन, यही है जीवन, दो पलों का यह नश्वर जीवन, एक दिन मौत आकर घेर लेती है सुमसाम, यही है जीवन, यही है जीवन, दो पलों का यह नश्वर जीवन, एक दिन जाना यही प्रकृति का रीति है, एक दिन जाना यही प्रकृति का रीति है, पाप कार्यों से आप पावो भीति, पुण्य कार्यों की बांध लो सच्ची गठरी, भगवान से करो सद्बुद्धि के लिए हमेशा विनती, भगवान से करो सद्बुद्धि के लिए हमेशा विनती। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बुरी आदत। रिमझिम रिमझिम बरसती है बरसात, रिमझिम रिमझिम बरसती है बरसात, वह भगवान की अनमोल है नियामत।

0: परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration.

0: और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जनसेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण अंग साबित होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ शामिल है। मैं स्वागत करना चाहूंगा तकनीकी और IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
1: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
2: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते थे, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
1: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है, और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
3: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो JCB है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
1: जी।
3: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना JCB को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे JCBs को अहमदाबाद और उनके

0: डिस्ट्रिक्ट्स में बाय ट्रेन, बाय रोड के बजाय बाय ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी।
1: जी
0: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको वो लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री। और जैसे ही वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था, कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें दो बातें हैं। एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी।
1: जी
0: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के, उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है, इसको मैंने अपने किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-डिजिट रेवोल्यूशन है,
1: बिल्कुल
0: तब लोग कह रहे थे कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये सचमुच में 12-डिजिट रेवोल्यूशन है।
1: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला 1 रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंचाता है पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो DBT मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
2: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन DBT के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या KYC होता है, उससे जो राशन कार्ड या खाद सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है, पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
1: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो यूपीआई ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हम

0: हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेहड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह यूपीआई के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजेक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शंस हो सकें, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए।
1: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना की, जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाए गए, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब एनपीसीआई ने यूपीआई स्टार्ट किया और जब नोटबंदी हुई, उसके बाद में कैसे इसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है, वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते
0: बिल्कुल
1: विदाउट कोविड के ये? और कम से कम 2 बिलियन, मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की बात हम आप कर रहे थे, जो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन में, एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजेक्शन, उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं एमबीए की बिटसॉम में एमबीए की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं भी पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपनी बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने मतलब पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। मैंने फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप एटीएम कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितने यूपीआई ट्रांजेक्शन किए, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं
0: जी जी
1: जितने क्लास में होते हैं या कहीं पर।
0: बिल्कुल
1: तो उस हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई, गए आप सब्जी लेने गए तो यूपीआई कर दिया। ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है, आप पैसे देने निकले या उसके पास खुले नहीं होते हैं, तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पे कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी एडॉप्शन में पीछे होते हैं, लेकिन इतना फास्ट एडॉप्शन जो हुआ है, ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उन्होंने उसको, उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेली मेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गांव में डॉक्टर ना हो, तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
0: बिल्कुल, यानी
1: एक बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक।
0: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविन कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त का आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम यूपीआई की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है।
2: जी, एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है, और उसमें से जो अपने छोटे एमएसएमईज या उद्यमी उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं,

0: डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो एमएसएमई भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और एमएसएमईज को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे एमएसएमईज अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के टॉप 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एमएसएमईज, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है, जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हो, या चाहे हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
1: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा, और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर, जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर। हम पहले दफ्तरों में, कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे, एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
0: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड्स में आप ये कर सकते हो, और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए, जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं, तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स हैं उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड हैं, वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है, तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है, जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है, वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
1: बिल्कुल, अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है, इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं, उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ है, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की।

0: हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितनी जितने अफसर हैं वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पौंडीचेरी से गया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो जो सुविधाएं हैं वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपियर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पे नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो, तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, अब आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इसे अचरज नहीं होता है हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है, उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन
1: जी
0: जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
1: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का। 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया, संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है, और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
2: बहुत ज्यादा असरदार है, और इसका जो सामान्य हम माई गॉव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं, और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं, और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा, डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहां पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में, विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा, और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल, उसके बारे में बातचीत करते हैं, और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शंस है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है, और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा, आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है, और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
1: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है, और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माई गॉव का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे, और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज

0: डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
1: बहुत सराहनीय है। जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले यह होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं। इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA लें तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधाएं जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग इस विचारधारा से जुड़ने में इतना उत्सुक है और इतना उनकी पार्टिसिपेशन है।
0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है। जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
1: एक बहुत बढ़िया पहल है ये और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को लेके उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम्स है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अब मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसमें कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
0: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं?
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनीज चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है।

0: तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए, 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को ज्वाइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे एमएसएमईज या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे एफटीएस भी साइन किए हैं, जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
1: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने इस साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और जन सेवा से देश सेवा इस श्रृंखला में आप शामिल हुए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे थे आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: మీరింతవరకు జనసేవయే దేశసేవ ప్రత్యేక ధారావాహిక కార్యక్రమం 19వ భాగం విన్నారు. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. రేపటి కార్యక్రమాల్లోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలు వింటారు. రేపు ఉదయం 6 గంటలకు సూక్తిసుధ సమర్పణ శ్రీ వీరలోకేష్. 6:10 భక్తిరంజని కార్యక్రమంలో అష్టాక్షరీ గీతాలు ఆంజనేయ స్తుతి ప్రసారమవుతాయి. 7:15 ఉదయరేఖలు కార్యక్రమంలో ఆలోచనాలోచనం సమర్పణ శ్రీ పులుపుల వెంకట ఫణికుమార్ శర్మ. అనంతరం రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం సందర్భంగా రొమ్ము క్యాన్సర్పై అవగాహన గురించి డాక్టర్ చైత్ర సొంటినేని గారితో పరిచయం. అనంతరం కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ గారి జయంతి సందర్భంగా నేటి మహిళలకు ఆదర్శం కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ డాక్టర్ ఉడుము ఝాన్సీ గారి ప్రసంగం ప్రసారమవుతాయి. 8:30 గంటలకు కాకినాడ